0: ये बोसीदा इंसानी खोपड़ियां ना ही अहरामे मिस्र से बरामद हुई हैं और ना ही बर्बरी या रूमी दौर की और ना ये आसारे कदीमा से दरियाफ्त हुई हैं, बल्कि ये इराक के मुख्तलिफ शहरों से बरामद शुदा इंसानी लाशों की बागियात हैं जिनका इंकशाफ सकूत सद्दाम के बाद हुआ है और न जाने इन जैसी कई दीगर लाशों का इंकशाफ इज्तमाई कब्रों से होता रहेगा। सद्दाम ने कितने इराकियों को मौत के घाट उतारा, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब बसा औकात मुश्किल मालूम होता है। क्या सद्दाम ने कोई ऐसा काम किया है कि जो इस जैसी दीगर ताकूती ताकतों ने न किया हो? तमाम ताकूती ताकतों ने अपनी कौम और अपने शहरियों पर मजालिम ढाए और उनका कत्लेआम किया है, लेकिन कौन सी चीज सद्दाम को दूसरों से नुमाया करती है? शायद ये मंजर इस बात को किसी हद तक वाजे करने में मदद देगा। इन तीन को सद्दाम के कहने पर फांसी का हुक्म सुनाया, जिस पर सद्दाम ने खुद दस्तखत, ये बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते थे सिवाय इसके कि अपने हाकिम का नाम सुनते ही तालियां बजाएं।
1: يقومون بوضع عبوة ناسفة صغيرة إلى جانب القلب ثم
0: क्या ये अफ़आल सद्दाम को दीगर आमिरों से जुदा करते हैं? हरगिज नहीं। इराक से ज्यादा दूर की बात नहीं, जहां एक और डिक्टेटर बसता था जो सद्दाम से किसी भी तरह जुल्म और बर्बरियत के लिहाज

0: जब सैयद सदर जेल में थे तो नजफ इंतजामिया ने अहमद हसन उल बकर को खबर भेजी कि नजफ तबाही के दहाने पर है और अगर शहीद सदर को रिहा न किया गया तो नजफ पर हमारा तसल्लुत खतरे में पड़ जाएगा और यूं हसन उल बकर आपको रिहा करने के अहकाम जारी करने पर मजबूर हो गया।
1: जेल से रिहाई के बाद सैयद बाकर सदर से कहा गया कि वो घर की चार दीवारी के अंदर पाबंद रहेंगे और किसी से नहीं मिलेंगे और यहाँ से आपके जबरदस्ती घर में नजरबंदी का आगाज हुआ और ये 10 महीने तक नजरबंदी जारी रही, यहाँ तक के आपको आखिरी मरतबा गिरफ्तार किया गया और शहीद किया गया। शेख रजा नुमानी पुलिस की नजरों से छुपकर सैयद बाकर सदर के घर में ही रहे।
0: हुकाम ने सैयद सदर के घर पानी और गजा की फराहमी पर पाबंदी लगा दी, यहाँ तक कि आपका खादिम खुर्दनोश की बुनियादी अशिया लाने से भी कासिर था और यूं सैयद के घर में खाने पीने के लिए कुछ न रहा और बाज़ लोगों का तावुन न होता जो खुफिया तौर पर खाने पीने की चीज़ें भेज देते थे और हकूमत पर दबाव बढ़ाने की कोशिशें कर रहे थे, तो सैयद सदर और इनके अहल वयाल के लिए सूरत हाल बहुत संगीन हो जाती। इसके बाद उन्होंने सैयद के घर में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करने की कोशिशें की, उन्होंने सैयद के घर को गिराने की कोशिश की इस तरह से कि पानी की मेन पाइपलाइन को इनके घर के नीचे छोड़ दिया और घर का आधा हिस्सा इस पानी से गिर गया। लेकिन अल्लाह ताला का करना ये हुआ कि जिस हिस्से में सैयद और इनके बच्चे थे वो सही सलामत रहा। जब इससे भी कोई फ़ायदा ना हुआ इसके बाद पेन की शक्ल में धमाका खेज मवाद भेजा गया। सैयद के एक पांव पर फालिज का हमला हुआ था, हमने घर के खादिम से कुछ दवाई लाने का कहा और इस बात को हकूमत के जासूस समझ गए। उन्होंने किसी न किसी तरीके से एक आला इस बहाने के साथ कि ये एक तिब्बी आला है भेजा जो दर हकीकत एक टाइम बम था। इस तरह उन्होंने हर मुमकिन दहशतगर्दी की कोशिश की।
1: नजरबंदी के अयाम में अखबार जमहूरी इस्लामी का नुमाइंदा आपसे टेलीफोन पर राब्ता कर सका, सैयद बाकर सदर के साथ ये पहला और आखिरी राब्ता था।
2: अस्सलाम वालेकुम।
3: अस्सलाम वालेकुम सैयदना, आपकी सेहत कैसी है? तबीयत अच्छी है इंशाल्लाह।
4: वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तुम्हें खुश रखे।
3: गुज़िश्ता वाक़यात के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
4: पैगामात के बारे में कुछ जवाब देने हैं।
3: जी फरमाइए।
4: ए आयतुल्लाह अल उज़्मा अल इमाम अल मुजाहिद सैयद अल खुमैनी, मैंने आपका पैगाम सुना जिसमें आपने मुझसे अपनी फिदराना शफकत का इजहार किया है, लेकिन मैं इसका जवाब नहीं दे सका इसलिए कि मुझे चारदीवारी के अंदर बंद कर दिया गया है। न मैं किसी को देख सकता हूँ और न ही कोई मुझे देख सकता है। मैं कुछ नहीं कर सकता सिवाय इसके कि अल्लाह सुबहानहु व तआला से सवाल करूँ कि वो आपके साये को तूलानी कर दे जो इस्लाम के लिए रोशनी के मीनार की तरह है, आपकी रहनुमा मजियत के जरिए दीन हनीफ की हिफाजत फरमाए। इसी तरह अल्लाह सुबहानहु तआला के हुजूर मेरा सवाल है कि वो अपने रास्ते में हमारी इन मुश्किलात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें तौफीक दे कि इस उम्मत के अकीदे की हिफाजत कर सके और उसके तशख्खुस को बरकरार रख सके। किसी भी इंसान की जिंदगी इस कदर होती है जिस कदर वो अपनी उम्मत को अपना वजूद, अपनी जिंदगी और अपनी फिक्र अता करता है, और आपने मुसलमानों को अपना वजूद और अपनी फिक्र अता फरमाई है कि जो तूले तारीख में मुजाहिदीन के लिए एक अजीम मिसाल करेगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
3: सैयदना एक आखिरी सवाल, सुना है कि आपकी सेहत अच्छी नहीं है, आजकल आपकी सेहत अच्छी नहीं है?
4: मेरी सेहत की कोई कीमत नहीं, मेरी सेहत की कोई कीमत नहीं।
1: उस वक्त ये बात बड़ी अहम थी कि सैयद सदर की नायब क़यादत की बात की जाए जो सैयद सदर की शहादत के बाद इस जिम्मेदारी को निभाए। सैयद सदर ने इब्तिदा में 4 अफराद मुंतखब किए और ये तय पाया कि ये नाम सैयद सदर की शहादत के बाद मंजरेआम पर लाए जाएंगे और वो ये नाम हैं: सैयद मुर्तज़ा अस्करी, सैयद मोहम्मद मेहदी उल हकीम, सैयद महमूद हाशमी, سید محمد